0: Pacemaker Radio Network across London, Manchester, and the Midlands.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
3: You know how fans shout at football matches?
4: Oh, wake up!
3: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
6: Relax, I've booked the Uber already.
5: How? My roaming isn't even working yet.
6: I switched to Simsy before we left London.
5: Simsy? Since when are you the tech expert?
6: Since I decided I want a stress-free holiday.
7: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
8: T's and C's apply.
9: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्डबर्ग।

कह गए गंगा राम हो मेरा, तुझे भी सलाम मेरा, तुझे भी सलाम, हम तेरे हैं गुलाम, हम तेरे हैं गुलाम।

0: गए गंगाराम हम मेरा तुझे भी सलाम मेरा तुझे भी सलाम।
1: ताजा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

0: This is Like a Gold.
1: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
2: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविए गुणि निदान। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदं, गुरुमुख रया समाई। गुरीसर गुरु गोरख बर्मा गुरु।

सो मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना।

होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए, अखरी

कौन पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतनु पाए तेरे 68 तीर्थ नाले।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहब नानक रहन जाई।

अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घटघट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बोल लख होवें लख होवें लखवीस लख

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटे संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवार।

0: Real Good Hits in the Sun with Like a Gold.
1: Hey! तुमने कभी किसी से प्यार किया?
2: किया!
1: कभी किसी को

0: Breakfast with Deep Roger. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: And good morning to you. A pound in your pocket can get you 128 rupees precisely. And don't forget, when it comes to the SBI exchange, you can do the exchanges in branch, online, or on the SBI Yono mobile app. Don't forget, terms and conditions apply, but don't delay. For the best prices today, make those exchanges at SBI now.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Deep Roger, waking you up every weekend. Like.
1: Good morning. Uthoto ji, hello, namaskar, adabar, sasrikar. My name is Deep Raja. It's great to be with you, and it's a lovely, lovely Saturday morning. Super Saturday, because I'm with you. Okay, shall we do it? The first question I have for you. Here we go. Just to open your dimags, my friends. Do you think... Sorry, just clearing my throat there. Do you think that the early release of prisoners that Prime Minister Andy Burnham has sort of encouraged in order to reduce crowding or overcrowding of jails and things is a good thing? Yes or no? Do you think the overcrowding of prisoners is there? Yeah, we know that. But do you think by releasing them early, it's going to be a great idea? Yes or no? What do you think? Tell me.
0: Time now for the yes or no question.
1: That's right, and you know the numbers.
0: WhatsApp message like a gold now on 0744 23 23 23.
1: Tell me, do you think the early release of Prince is good or bad?
0: Breakfast with Deep Roger.
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
4: Weddings, celebrations, corporate events, Ragas and sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes design karne tak. World class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. Foran ka phone milaye 0208839880 or visit ragasan.com. Location, design, management ya catering. Ragasan
5: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
4: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं.
6: Kajal's Couture's biggest end-of-season sale begins Saturday, the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture on 159 The Broadway, Southall and 47 Green Lane, Northwood. The biggest sale of the season starts this Saturday at Kajal's Couture. Don't miss it. From the 8th of August until stocks last. So act quick.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: Travel hope best. सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
9: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
10: बी पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग,
11: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS स्वामीनारायण मंदिर इन पेरिस, अ वंस इन अ लाइफ टाइम स्पिरिचुअल journey.
10: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
11: Departure 5th of September. Call now on 0203 773 633.
10: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
13: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
12: डेजर्ट सफारी,
13: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
12: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
13: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410, दैट्स 0208574 8410।
14: साउथ हॉल ट्रेवल ऑटो प्रोटेक्टेड।
15: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स, परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर। आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए। 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे, बायरन हॉल, हैरो लेजर सेंटर।
16: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208-426-0678।
17: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
18: Breakfast with Deep Roger. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
19: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Mornings for London at Breakfast and Drive.
1: Hi, I'm Clapped, and I'm the opposite of attractive. If you're calling someone a 10, it's definitely not me. I usually show up when someone's appearance becomes the punchline. So if I pop up in your kid's feed, it might be time for a chat. Search Tesco Mobile Online Safety to find out how to start the conversation at home.
2: We know your family matters most. That's why we're happy to be your second most important network. Tesco Mobile. It pays to be connected.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
5: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
2: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
3: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. टीज एंड सीज अप्लाई.
5: इल्फर्ड, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए.
6: परंपरा भी फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है. मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसल, इल्फोर्ड, IG26HA. कॉल 07555-506015.
7: sonatours.co.uk 13 days, वियतनाम एंड कंबोडिया डिपार्चर्स एवरी मंथ सितंबर टू दिसंबर. गेट 100 ऑफ इफ यू बुक दिस मंथ. कॉल सोनाटूर्स नाउ ऑन 02089510111.
8: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
9: Look, there's a snail, and its eyes are sticking out of its tentacles. It looks like an ice cream.
10: Ella sees a lot more than just a snail. With free kids' glasses from Specsavers, plus a second pair from £10, they'll see a world of wonders. And you'll see a great deal too. So book them an appointment at Specsavers today for free. £10 second pair with free glasses from our £65 and above range.
9: Conditions apply. See online for details.
8: On this week's Leica Extra podcast, we discuss astrology, truth or trap, hosted by Kush, who talks to an astrologer and palm reader.
11: Let's talk about the next generation of South Asians, because whether it's astrology, whether it's anything to do with gemstones, lucky color, lucky days, palmistry, matching charts, any of that, it's not going anywhere.
8: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Breakfast with Deep Roger.

0: to book now, visit starters.co.uk or call
1: 208-900-2323.
2: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208-426-0678.
4: Kajal's Couture's biggest end-of-season sale begins Saturday, the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture on 159 The Broadway, Southall and 47 Green Lane, Northwood. The biggest sale of the season starts this Saturday at Kajal's Couture. Don't miss it. From the 8th of August until stocks last. So act quick.

0: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kachha Bazaar, Sameer Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha Rice, come down and taste the difference. Watford में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
1: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
0: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
1: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वॉटफोर्ड कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे
2: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं जिंदगी भर याद रह जाती हैं और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट संडे द 6th ऑफ सितंबर एट द मेशा लोहाना सेंटर लंदन अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अश्विन ऑन 07956278228 एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क
3: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
4: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
3: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
5: डेड्रे लुक It's the bottom list this time, sliding across their car bonnet.
6: Leave them be, Philip. They just claim confident.
5: Claim confident?
6: Yes, by doing their own car finance compensation claim, using the FCA's free tools to help, they'll keep 100% of what they're owed. I've just done ours too. Come on!
5: Deirdre? Come back here.
7: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.

0: prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
0: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
0: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
0: in Dubai.
2: Europe aur UK ke sapne dekh rahe hain? To Mantra Holidays ke saath travel kijiye. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
3: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 020-3773-633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
4: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं। और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट संडे द 6th ऑफ सितंबर एट द मेशा लोहाना सेंटर लंदन। अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अश्विन ऑन 07956278228। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
5: अनुज चोपड़ा फाउंडेशन प्राउडली प्रेजेंट्स एन इवनिंग ऑफ एलिगेंस होस्टेड बाय अनीसा नासिर। तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए जहां गजल्स मिलती है बॉलीवुड से।
6: शाम चलने लगे दिल मच
5: विद द लेजेंडरी अनूप चलोटा ऑन संडे 30th अगस्त एट क्वींस थिएटर रॉमफर्ड। डोर्स ओपन 5 PM, शो स्टार्ट्स 6 PM, टिकट स्टार्ट्स फ्रॉम £40। बुक नाउ एट queens-theatre.co.uk। रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
8: गारंटेड
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
8: फोन 020-8574-8410।
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
10: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
11: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
10: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
11: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
10: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
11: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
12: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10 kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10 kg, only £7.99, exclusively at quality food stores.
13: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
14: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: ਅਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Mamster products are nut free and made in Canada now available at quality food branches
2: 40 million people listen to commercial radio each week That's 80 million ears give or take Amplify your advertising at radiocentre.org.
3: Breakfast with Deep Roger. Up next, Ritu Sharma with the Ritu Sharma Show on Like a Gold.
4: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे

0: और इस गाने में खयाम साहब ने भी कमाल किया है, किशोर कुमार और लता जी ने किया गाया है। त्रिशूल फिल्म से लिया था ये गाना, और उससे पहले सुहाग फिल्म का गीत जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कमाल किया और एक सुपरहिट गाना हम सबको दिया। और लीजिए दो बैक टू बैक गीतों के साथ आज के द ऋतु शर्मा शो की शुरुआत हो गई है, और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड मिडलैंड्स, और जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और मुझे उम्मीद है कि इस पूरा हफ्ता आप बहुत खुश रहे होंगे, अच्छे से बीता होगा और मेरा भी इंतजार किया होगा, है ना। चलिए, किया हो या नहीं किया हो, फिलहाल तो हमारा और आपका साथ शुरू हो गया है। 3 घंटे तक मैं यही रहने वाली हूँ आपके साथ, और एक नहीं दो नहीं ढेर सारे गाने भी सुनवाने वाली हूँ। इसके अलावा शो में जो भी कुछ होता है आज भी होगा, लेकिन आपको बस मेरा साथ देना होगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो अगला गीत बजाने से पहले आपको बता दें कि £1 आज आपको देगा 128 भारतीय रुपए, लेकिन ये ट्रांसफर करवाएंगे आप बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट SBIUK.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
2: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
3: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
4: Dad,
5: what's wrong, beta?
4: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
5: I will run down to the money exchange now.
4: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
5: Oi, bale bale. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
4: SBI UK regulated by the FCA and PRA. Start.

लीजिए ये गाना मेरी ओर से आप सभी के नाम पर जाता है, माय फेवरेट उदित नारायण और साथ में थी पूर्णिमा। करिश्मा कपूर और हीरो नंबर वन गोविंदा की फिल्म से लिया था हमने ये गाना। और सुनने में आया कि आजकल हीरो नंबर वन यानी कि गोविंदा यही लंदन में घूम रहे हैं, तो आपको कहीं मिले क्या? अपनी नजरें जरा इधर उधर घुमाते रहिए, हो सकता है आपको घूमते हुए मिल जाए। लेकिन मैं तो मिल चुकी हूँ, इसलिए मैं भी आजकल, वैसे आपको बताऊँ, पूरे हफ्ते बहुत बिजी रही। हमारे शेखर जी पूछ रहे हैं कि आपने हमसे तो पूछ लिया कि पूरे हफ्ते हमने क्या किया, लेकिन अपना तो बताया ही नहीं। तो मैं बता रही हूँ, मैं भी बहुत बिजी रही। मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, चारों दिन मैंने इतना ट्रैवल किया है और बहुत सारे काम खत्म किए हैं जो काफ़ी दिनों से लटके पड़े थे। लेकिन मुझे गोविंदा कहीं नहीं मिले, हाँ मुझे नहीं मिले। लेकिन चलिए आप ध्यान से घूमते रहिए और इधर उधर नज़रें घुमाते रहिए, शायद आपको मिल जाए। ये गाना बड़ा ही सुंदर था जिसे आप सबने पसंद किया है और आपके ढेरों मैसेजेस मुझे मिल चुके हैं। हमारी आंटी जी कहती हैं, क्या बात है, मैंने जैसी रेडियो खोला अमिताभ बच्चन का गाना आ रहा था और आप अमिताभ बच्चन की फ़ैन है, तो ये कह दूँ आपका तो दिन बन गया है ना। आपने कहा नहीं लेकिन मैंने कह दिया। चलिए दोनों गाने हमने आपके नाम पर किए। और इसके अलावा हमारे राजेश जी का कहना है कि बाहर कितनी गर्मी है अंदर कितनी सर्दी है, मतलब ये गाने की ये लाइन मेरे लिए बहुत सूटेबल है। बाहर वाकई में गर्मी है लेकिन अंदर यहाँ एसी चल रहा है। लेकिन आपका कहना है कि बाहर की गर्मी को मिटाने के लिए, बादलों को बुलाने के लिए क्यों ना हम कोई यज्ञ करें, मंत्रोच्चार करें। सही कह रहे हैं राजेश जी, कुछ करना चाहिए। बादल तो जैसे हमसे रूठ ही गए हैं, इतने दिनों से शक्ल ही नहीं दिखाई, जो आए दिन हमारे ऊपर छाए रहते थे, जिन्हें देखकर हम बोर हो जाते थे, पता नहीं कहाँ रूठ कर चले गए हैं और अब अगली बारिश यहाँ कब होगी, सभी को बेसब्री से इसका इंतज़ार है। लेकिन आप हमारा साथ दे रहे हैं ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सो थैंक यू, साथ देते रहिए। थैंक यू मौसमा जी, महेंद्र पटेल जी, हरीश खत्री जी, मिसेस पे के चियांग, जैस्मीन, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। थैंक यू मिस्टर केश नाथवानी जी, आप साथ दे रहे हैं और थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए। लेकिन हिमांशु पटेल जी धन्यवाद, निर्मला जी, जासू जी, अरुणा जी, तोची जी, मृदु जी, और ये कौन है, यस ये है हमारे नसीर अहमद जी, पोर्चुगल में प्रोग्राम सुन रहे हैं। और इसके अलावा ये मैसेज आया है, लिखते हैं प्लीज थैंक्स ऑसम, अरे सारे आपने स्माइलीज बनाकर लिख दिया है और कुछ लिखा ही नहीं है, बस ये लिख रहे हैं फ्रॉम मी सोफी सनी स्कॉटलैंड। ऐसे लग रहा है जैसे स्कॉटलैंड में सनी वेदर है, अब सनी है, गीतों को इंजॉय कर रहे हैं। चलिए ये गाना जो था मैंने आप ही को डेडिकेट किया। और इसके अलावा हमारे विजय गुडूरी जी ने हमेशा की तरह एक बड़ी ही सुंदर सी बात हमारे साथ शेयर की है और कहते हैं कि वक्त चाहे कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, ईश्वर का धन्यवाद करना मत भूलिए, क्योंकि अच्छा वक्त हमें खुशी देता है और बुरा वक्त हमें मजबूत बनाता है। Feel good track. Brought to you by Derry Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. Laika Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles. तो चलिए आपसे इतनी सारी बातें हो गई तो क्यों नाग लगाना आप ही के नाम किया जाए। मीरा जी, प्रकाश सुधार जी नॉर्थ हॉल से, निर्मला जी थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए, महेंद्र बाजारिया जी थैंक यू, ये गीत लता जी की आवाज में मेरी ओर से आप सबके लिए।

0: राजकुमार फिल्म का ये गाना आप में से ज्यादातर साथियों ने पसंद किया है। शंकर जयकिशन का म्यूजिक और पृथ्वीराज कपूर, शम्मी कपूर और साधना की फिल्म, और इस गाने में साधना जी बहुत ही खूबसूरत लगी हैं। वैसे तो हर फिल्म में खूबसूरत लगी हैं और उनके बहुत सारे फैंस उस ज़माने में भी थे और आज भी हैं, लेकिन इस गाने में जो उनका लुक है उसकी बात ही कुछ और है। और जिन्हें ये गाना पसंद है, हम ये गाना उन्हीं को डेडिकेट कर देते हैं। विनोद जी कहते हैं कि मुझे तो ये गाना बहुत अच्छा लगता है ऋतु, तो चलिए विनोद जी, हमने इसे आपके नाम पर किया।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: तो चलिए, इस गाने को सुनकर हमारे मानशु पटेल जी भी कहते हैं कि ये मूवी आपने जामनगर में देखी थी जब आप सिर्फ 14 ईयर्स के थे। देखिए कितना समय बीत गया, लेकिन गाना आज भी कितना मधुर लगता है। और इसीलिए तो इन गानों को सुनकर अमिताभ बच्चन भी कहते हैं कि इन गानों को, ये जो सिंगर्स हैं, इनके लिए म्यूज़िक की ज़रूरत वैसे थी नहीं, इनकी आवाज़ में ही इतनी खूबसूरती, इतनी लय, सुर, ताल थी कि अगर आप इन आवाज़ों को बिना म्यूज़िक के भी सुने ना, तो भी ये उतने ही सुंदर सुनाई देंगे। आपने आजकल के गाने सुने होंगे जिसमें सिंगर की आवाज़ तो होती है लेकिन म्यूज़िक आवाज़ से ज़्यादा लाउड होता है, लेकिन अगर इन गीतों को सुना जाए तो इसमें म्यूज़िक भी बसता है लेकिन सिंगर की आवाज़ अलग ही उभर कर सुनाई देती है, और जिसमें जो मधुरता है उसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। आगे बढ़ जाती हूँ और आगे बढ़कर थैंक यू कहना चाहती हूँ मीरा जी को। हमारी मीरा जी कहती है, ऋतु मैं लंदन आ रही हूँ, हो सकता है मुझे गोविंदा मिल जाए। अरे बिल्कुल हो सकता है, उम्मीद नहीं छोड़ना। बस आप जब घूमें ना लंदन की सड़कों पर, तो कबूतर की तरह अपनी गर्दन चारों तरफ घुमाते रहिए, हो सकता है आपको दिख जाए गोविंदा। मैं कहूँगी आपको मिल जाए, लंदन आना सफल हो जाए अगर आप उनके फैन है तो। थैंक यू रूपसाही जी, आपका मैसेज बहुत लंबा है जिसे ज़रूर पढ़ूंगी। थैंक यू प्रज्ञा, आप भी आ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुशरण जी, और ये मैसेज जासू जी आपका भी धन्यवाद। एक और मैसेज था जिसे मैं पढ़ना चाह रही थी। यस, हमारे नरेंद्र बागिया जी ने लिखा है कि कहते हैं रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो हरदम जीने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त ज़रूर बदलता रहता है। और वक्त की ये सबसे अच्छी बात है कि अच्छा हो तब तो कट ही जाता है, लेकिन बुरा भी हो तो भी गुजर जाता है। वक्त कभी कहीं पर भी किसी के लिए रुकता नहीं है।
2: ये है Like a Gold, Ritu Sharma live on Like a Gold Greater London. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: तो हॉलीडे जाने के बारे में सोच रहे हैं तो साउथॉल ट्रैवल को कॉल कर लीजिए। उनके पास दुबई के लिए बहुत अच्छी डील्स है। आप उन्हें फ़ोन कीजिए ऑन 0208-574-8410 पर, और ये सब है टोल प्रोटेक्टेड।
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. This is Ritu Sharma.
3: Us kids are mesmerized by the mundane, entranced by the everyday. Where grown-ups see a snail, we see a slippery-shelled beast from the undergrowth. But around 1 in 5 young children have a sight condition that can get in the way of all that wonder. The good news is, if these are found early, they can be managed or corrected. So book your child a free eye test at Specsavers today. Find out more at specsavers.co.uk/kidstests.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays, हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
6: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com. Gargels Couture's biggest end-of-season sale begins Saturday, the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear.

0: mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410, and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
1: No more worries for me or you.
2: Southall Travel, at all protected.
3: September महीना में हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रहे छे।
4: तमे बता पुरुष हो तो लगने लगने कुवारा हो छो।
5: ए तमे स्त्री हमने ऐसे रहे पुरुषों नाम खोटा होगो वालों बंद करो।
3: Comedy King निमेशा अने Queen of Comedy मल्लिका शाह लेने आवी रहे छे। Super Hit गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान मा। हवे Risley, Potter's Bar, Ilford, South London अने Luton मा। Tickets अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931534270। नाटक नु नाम याद रखो साउथ हॉल, देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
6: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी।
7: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल, UB2 4DB। कॉल 07795181001।
8: लंदन वालों ध्यान से सुन लो के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
9: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
10: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
11: And its eyes are sticking out of its tentacles. It looks like an ice cream.
12: Ella sees a lot more than just a snail. With free kids' glasses from Specsavers, plus a second pair from £10, they'll see a world of wonders. And you'll see a great deal too. So book them an appointment at Specsavers today for free. £10 second pair with free glasses from our £65 and above range.
11: Conditions apply. See online for details.
13: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Leica Radio और Leica Gold आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@leicaradio.com.

0: बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सा गाना जिसे लिया था फिल्म बड़े दिल वाला फिल्म से, आर डी बर्मन का म्यूजिक और ऋषि कपूर और टीना अंबानी की फिल्म। और आपको बता दूं कि आज ऐसे ही और भी बहुत सारे रोमांटिक गाने आप सुनेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में यादें में, क्योंकि आज ऋषि कपूर की पत्नी यानी कि नीतू सिंह का हैप्पी वाला बर्थडे है। यस, तो आज की यादें में नीतू सिंह को याद करेंगे और उनके बहुत ही चुने हुए गाने मैं आपको सुनवाऊंगी। लेकिन उससे पहले गिरीश जी, आपको थैंक यू कहते चले, ये गाना आपके नाम किया, आप भारत में हमें सुन रहे हैं और आप कहते हैं कि हमने आपका कल भी इंतज़ार किया था क्योंकि दो फ्राइडे से मैं यहाँ आ रही थी, लेकिन क्या किया जाए, आज मेरा शो है तो आज मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आपने इंतज़ार किया, थैंक यू सो मच। जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन फ़िलहाल तो आज आपके साथ हूँ और आप मेरा साथ दे रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या है। ये गीत मैं आपको ही डेडिकेट करती हूँ और आपके साथ साथ अर्जुन जी, संतोष जी हैरो से, अनिल सोनी जी वियाना से, थैंक यू राजकुमार जी, थैंक यू अलका जी एंड फरजाना जी, एंड ऑफ कोर्स हमारे भरत गंगाराम जी, सुरजीत जी, आप सभी का स्वागत है इस शो में।
1: Hey there, मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट, कैच मी ऑन माय शो गोल्ड आफ्टरनून्स विद ट्रिब्यूट्स, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने ऑन लाइक अ गोल्ड एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 1 PM टू 4 PM।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 103.57 pounds per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: Like a gold. Yeah. Like a gold. Like a gold.
3: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
4: I hope Major Nena, hum log waqt par pahunche.
5: Have you noticed the way fans shout at football matches?
6: Oh, wake up!
5: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
1: London. Jay's Entertainment presents Bollywood legend live in London. Bollywood actor Aftab Shivdasani. Playback singer Amantrika.
3: Hello re, hello re, hello re, hello re.
1: Or soulful singer Mayuri Patalia live Harrow me. Today, 3rd October, 7 p.m. Harrow Arts Center. Tickets abhi book kijiye Harrow Arts Center box office se. More information ke liye call 0777-161-5800. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
5: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स. परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर. आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए. 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर.
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208-426-0678.
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
8: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10kg is only £7.99 exclusively at quality food stores.
9: Be part of a historic grand opening.
10: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
9: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
10: Departure 5th of September. Call now on 02-03-773-633.
9: Mantra Holidays. What's your travel mantra?

0: कभी कभी फिल्म का ये रोमांटिक सा गाना जिसमें ऋषि कपूर के साथ थी नीतू सिंह, और आज नीतू सिंह अपनी हैप्पी वाली बर्थडे मना रही हैं। 8 जुलाई 1958 में बॉर्न नीतू सिंह आज 68 ईयर्स की हो गई हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी बड़ी ही पॉपुलर खूबसूरत हीरोइन रही हैं, जिन्होंने 1970s से लेकर 1980s के दौर में बहुत सारी फिल्मों में काम किया, और उन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन सिर्फ 22 साल की उम्र में, जिस उम्र में कुछ हीरोइंस अपना करियर स्टार्ट करती हैं, ढेर सारी फिल्मों में काम करने के बाद घर बसाकर बॉलीवुड इंडस्ट्री को बाय बाय कह दिया। और इस छोटे से समय में ही उन्होंने कई यादगार फिल्में की हैं, जिनके की गीत मैं आज आपको सुनवाने वाली हूँ। दो बैक टू बैक गीत आप सुन चुके हैं, ऐसा ही एक और खूबसूरत गीत आने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नीतू सिंह उनका असली नाम नहीं है, असली नाम उनका है सोनिया सिंह। और आज ही के दिन दिल्ली के एक सिख परिवार में पैदा हुई थी, और तभी तो ऋषि कपूर कहते थे कि जब इस सिखनी से मेरी आंख लगी तो फिर इसके बिना रहा नहीं जाता था। और सोनिया सिंह, जो कि नीतू सिंह का बचपन का नाम है, बचपन में वो इसी नाम से जानी जाती थी, उन्होंने सिर्फ 8 साल की उम्र में सूरज फिल्म में बेबी सोनिया के रूप में काम किया था। उनकी एक और फिल्म आई थी दो कलियां बच्चे मन के सच्चे, गीत आपने सुना होगा 1968 में, जिसमें वो डबल रोल में थी, काफ़ी पसंद किया गया था। लेकिन उसके बाद एज ए हीरोइन उन्होंने रिक्शा वाला फिल्म से अपना डेब्यू किया, और उसके बाद तो जब यादों की बारात का वो गाना आया ना, लेकर हम दीवाना दिल, बहुत बड़ा हिट हुआ ये गाना, और इस गाने से नीतू सिंह रातों रात स्टार बन गई। हालांकि इस फिल्म में इनका सिर्फ एक ये गाना ही था, लेकिन उसके बाद फिल्मों की एक के बाद एक लाइन लग गई, और आपने देखा ही है कि कितनी खूबसूरत फिल्मों का हिस्सा रही है। ऐसा ही एक और बहुत सुंदर सा गीत मैं आपको सुनवाने वाली हूँ अब से बस थोड़ी ही देर में, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं यादें में नीतू सिंह की।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए, और याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI ब्रांच ऑनलाइन by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी अप्लाई होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Gold.
4: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.

0: यहाँ जिंदगी वहाँ सैक्टर माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
1: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
2: Dad,
3: what's wrong, beta?
2: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
3: I will run down to the money exchange now.
2: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
3: Oi, bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
4: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: One performer,
2: countless personalities,
1: a whole universe of entertainment.
2: Sunil Grover live UK tour 2026.
1: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabi to brand new surprises.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
4: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
4: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
3: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
4: ईमेल नाउ info@royalchayvending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
5: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
6: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
5: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
7: 24 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
8: Dard se purana rishta hai mera.
9: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Awara Pan 2.
8: Usse mujhe chua, par apnaya nahi. To phir
9: releasing in cinemas on August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
10: Like a Goal, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Like a Goal aur online suno likeagoal.com pe. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
11: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: क्या ब्यूटीफुल धुन बनाई है उषा खन्ना ने। फिल्म का नाम हवस, जिसमें नीतू सिंह ने काम किया था अनिल धवन के साथ। और ये फिल्म कैसी थी इस बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये गाना बहुत ही खूबसूरत था। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में आप सभी का फेवरेट, और आज हम यादें में याद कर रहे हैं नीतू सिंह को, क्योंकि आज है उनका बर्थडे।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: वैसे आज ये नीतू सिंह के बारे में बात कर रही हूँ, एक और बहुत सुंदर सा गीत आने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि नीतू सिंह और ऋषि कपूर ने शादी तो ज़रूर की है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें पहले ऋषि कपूर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि ऋषि कपूर सेट पर बहुत शरारती थे, नीतू सिंह को बहुत परेशान किया करते थे, कभी उनके चेहरे पर काजल बिगाड़ देते थे, कभी कोई उनके साथ प्रैंक करते थे, और वो इतनी परेशान हो जाती थी कि सेट पर रोने लगती थी। लेकिन धीरे धीरे यही नोक झोंक प्यार में बदल गई। इतना प्यार हो गया कि ऐसे भी किस्से मैंने सुने हैं कि जब नीतू सिंह शूटिंग करने जाती थी जहाँ ऋषि कपूर नहीं होते थे, तो या तो ऋषि कपूर अपनी शूटिंग ख़त्म करके नीतू सिंह के सेट पर आ जाते थे, या फिर नीतू सिंह जल्दी जल्दी अपना सीन ख़त्म करके ऋषि कपूर के पास पहुँच जाती थी। भाई ये उनका पहला प्यार जो था। बाद में दोनों ने शादी भी रचाई और बॉलीवुड की सबसे रोमांटिक ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जोड़ीज में उनका नाम मुझे लगता है शायद टॉप पर आएगा।
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से लिया था ये गाना। और आज की यादें में हम याद कर रहे हैं नीतू सिंह को। एक और उनकी फिल्म का बड़ा ही सुंदर सा गीत मैं आपको सुनवाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले
1: रिचि शर्मा ऑन लाइक अ गर्ल।
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
0: तो आपको बता दें कि इस बार के लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ चुका है और इसका टाइटल है इज एस्ट्रोलॉजी रियल और ए ट्रैप, जिसे होस्ट किया है खुश ने। और आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर।
1: This is Like a Gold.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
7: Kajal's Couture's biggest end-of-season sale begins Saturday, the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture on 159 The Broadway, Southall and 47 Green Lane, Northwood. The biggest sale of the season starts this Saturday at Kajal's Couture. Don't miss it. From the 8th of August until stocks last. So act quick.
8: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027193 4. Start.

0: होती कि मैंने फिल्मों को जल्दी बाय बाय कह दिया। अच्छी बात है। आपको बता दें कि आज की यादें में हम नीतू सिंह को याद कर रहे हैं, जिनकी बर्थडे आती है जुलाई में, 8 जुलाई को इनकी बर्थडे आती है, और आज हम इन्हें याद कर रहे हैं। एक और इनका बहुत ही खूबसूरत सा गाना मैं आपको सुनवाने वाली हूँ, जिसका आप सभी को इंतजार है। चलिए बजाते हैं अब से बस थोड़ी ही देर में।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 103.57 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: लीजिए, आज की यादें में हम नीतू सिंह को याद कर रहे हैं और मोहम्मद अयूब चौहान कहते हैं ये गाना मेरे नाम कीजिए आपके साथ साथ। सभी लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं उनके नाम जाता है। एंड रमा व्यास जी, आपने नीतू सिंह के साथ एक बहुत ही प्यारी सी पिक्चर शेयर की है और आपने लिखा है कि वो 1975 में आपके घर आई थी। क्यों, घर क्यों आई थी? आपकी उनसे रिश्तेदारी है क्या? ज़रूर बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि नीतू सिंह आज भी बहुत फिट हैं और फिल्मों में आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी एक फिल्म आई थी, दादी की शादी, देखी है आप में से किसी ने? मैंने नहीं देखी, लेकिन नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। और आजकल बड़ी ही फिट हो गई हैं, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखती हैं, योगा वोगा करती हैं और 68 ईयर्स की तो कहीं से भी नहीं लगती हैं। आज हमने उनको याद किया, उनके कुछ गाने आपको सुनवाए। एक और ऐसा ही गाना जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था, सुनवाती हूँ बस अब से, बस थोड़ी ही देर में।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
2: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
3: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
4: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
5: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है? इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 24-hour लाइन।
6: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
5: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300।

0: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Kenton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल at all protected.
2: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
3: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
2: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
3: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
2: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
3: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
2: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
3: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
4: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 0203-773-6333। मंत्रा हॉलिडेज, what's your travel mantra?

0: लीजिए, ये था गाना राम बलराम फिल्म से लिया हुआ, हमसे भूल हो गई हमका माफी दे दो। लेकिन ये दो शब्द, दो लाइन बोलने में कई लोगों को इतनी तकलीफ होती है कि वो बस कुछ भी बोल लेंगे लेकिन ये दो शब्द नहीं भूलेंगे, पता नहीं क्या है। एनीवेज, गाना बहुत ही सुंदर था, आज बड़े दिनों बाद प्रोग्राम में शामिल किया। और उससे पहले इंतहा मैंने गाऊंगी, हो गई इंतजार की शराबी फिल्म का गीत जिसे आप सबने पसंद किया है। और मालती जी कहती हैं कि तुम आपने वो गाना बजाया ना तुमसे दूर रह के, आहा मजा आ गया, आपका फेवरेट गीत है। चलिए मालती जी, मैंने ये गाना आपको डेडिकेट किया। इसके अलावा रितेश कहते हैं रितु कितने अच्छे गाने बजा रही हो, आय हाय थैंक यू, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू निर्मला जी हमारा साथ देने के लिए, थैंक यू जासू जी, दिनेश सॉरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा जितने भी साथी सुन रहे हैं सभी का स्वागत है। एंड विजय जी आपने एक जोक हमारे साथ शेयर किया और कहते हैं कि लड़की कहती है अपने पति से अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो पति कहता है पर तुम तो कहती थी कि मैं तुम्हारे सपनों का राजा हूं, तो पत्नी कहती हाँ वही तो अब मैं जाग गई हूं। अच्छी बात है, नाइस जोक। और अब बात कर लेते हैं आज के थ्री वर्ड्स गेम की, तैयार हैं आप सब? जिन्हें नहीं पता है कि ये थ्री वर्ड्स क्या होता है तो बता देती हूँ कि बॉलीवुड के किसी एक गाने से जो शुरू की तीन चार लाइंस होती हैं वहाँ से मैं तीन वर्ड्स उठाती हूँ और आपको उन वर्ड्स की हेल्प से पहचानना होता है कि गाना कौन सा है। तो पहला वर्ड है आज का मोहब्बत, दूसरा है नज़ारा और तीसरा है सहारा। ये फिल्म 1963 में आई थी, लता मंगेशकर की आवाज़ है और नौशाद का म्यूज़िक है, गाना बड़ा ही मशहूर है। कौन सा गाना है ये, कुछ समझ आया? अगर आया तो देर किस बात की है, भिजवाइए ना अपना मैसेज हमारे इस नंबर पर।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323.
0: चलिए वर्ड्स एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, मोहब्बत, नज़ारा और सहारा। 1963 की फिल्म है, लता मंगेशकर की आवाज है और नौशाद का म्यूजिक है, कौन सा है ये गाना?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: जब तक आप सोचिए मैं आपको बताती हूँ कि आज ये 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए। और ये ट्रांसफर हमेशा की तरह आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी लागू रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Like a goat.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.

0: जैसे
1: सेटको माइक्रोवेव फूड कंटेनर
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियां लाए।
1: जहां जिंदगी वहां सेटको माइक्रो।
3: Kajal's Couture's biggest end-of-season sale begins Saturday, the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture on 159 The Broadway, Southall and 47 Green Lane, Northwood. The biggest sale of the season starts this Saturday at Kajal's Couture. Don't miss it. From the 8th of August until stocks last. So act quick.
4: सप्टेम्बर महीना માં હાસ્ય નો ડબલ ધમાકો ફરી આવી રહ્યો છે।
5: તમે બધા પુરુષો તો લગ્ને લગ્ને કુવારા હો છો।
6: એ તમે સ્ત્રીઓ અમને છે ને પુરુષો નામ ખોટા ઓગવવાનું બંધ કરો।
4: કોમેડી કિંગ નિમેશ શાહ અને ક્વીન ઓફ કોમેડી મલ્લિકા શાહ લઈને આવી રહ્યા છે સુપર હિટ ગુજરાતી નાટક હાલો પટેલ ભાઈની જાનમાં। હવે રાઇસલીપ પોટર્સ બાર ઇલફર્ડ સાઉથ લંડન અને લ્યુટનમાં। ટિકિટ્સ અને વધુ માહિતી માટે આજે જ કોલ કરો મંજુને ઓન 07931534270। નાટકનું નામ યાદ રાખજો।
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस।
9: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड। अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
10: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
11: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
10: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
11: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
12: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना।
13: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
12: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
14: बी पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग
15: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS स्वामीनारायण मंदिर इन पेरिस अ वंस इन अ lifetime spiritual journey.
14: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River cruise and a Paris city tour.
15: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-6333.
14: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
16: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
17: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: प्यारा गाना लिखा है हसरत जयपुरी ने और क्या म्यूजिक बनाया है शंकर जयकिशन ने. आई जस्ट लव दिस सॉन्ग. और ये फिल्म अप्रैल फूल थी जिसमें विश्वजीत और सायरा बानू ने काम किया था. और आपको अब तक तो पता चल ही गया है कि विश्वजीत ही है हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक. और इस गाने के बाद अब सिलसिला शुरू करते हैं आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का. सुनवाते हैं आपको पहला गाना. लेकिन आपको ये बता दूं कि आज बड़ा भारी कंफ्यूजन है. आज आपने बहुत सारे गाने बताए हैं लेकिन कुछ साथियों ने सही गाने भी बताए हैं लेकिन ज़्यादातर ने इसे एक गाने के साथ जोड़ दिया है. कुछ कहते हैं मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, क्योंकि इसमें मोहब्बत और सहारा भी है. लेकिन आप ईयर को देखिए और म्यूजिक डायरेक्टर को भी देखिए, फिर आप सोचिए कि इन तीन वर्ड्स पे कौन सा गाना हो सकता है. ये मैंने आपको हिंट दिया है. और नहीं तो जिन्होंने सही जवाब दिए उनको मैं उनके नाम भी बताऊंगी, गाना तो सबको सुनवाऊंगी. लेकिन फिलहाल शुरू कर रही हूँ आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला. सुनवाते हैं आपको पहला गाना.
1: ये है लाइका गोल्ड फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: क्या धुन बनाई है। अगर नाग भी इस धुन को सुन ले तो आई एम श्योर वो भी झूमने लगेंगे। और क्या धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने 1959 की फिल्म से लिया था ये गाना, जिसमें रंजन चित्रा जयश्री गढ़कर ने काम किया था। और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का पहला गाना। और बहुत सारे साथियों ने सही जवाब दे दिया है, और जिन्होंने सही जवाब दे दिया है मैं उनके नाम जरूर बताऊंगी, लेकिन पहले
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 90s के बॉलीवुड लेजेंड उदित नारायण परफॉर्म करने जा रहे हैं अपने बेटे आदित्य नारायण के साथ एट ओवो अरीना वैमली में ऑन संडे 20th December। टिकट्स अवेलेबल हैं फ्रॉम टिकट मास्टर एंड AXS पर। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है इसके लाइका रेडियो नेटवर्क। और अगर आपने टिकट्स बुक नहीं कराए हैं तो जल्दी कीजिए, अपने टिकट्स आज ही बुक कीजिए।
1: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
0: हाँ जी, तो बात कर लेते हैं आज के थ्रीवर्स गेम वाले गाने की। एक्चुअली ये गाना उस फिल्म में रफ़ी साहब ने भी गाया है, लेकिन मैंने जो गाना चूज़ किया है उसमें लता जी की आवाज़ है। तो ये भी एक बड़ा क्लू है, अगर आप चाहें तो गैस कर सकते हैं, वरना परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। ये सिर्फ हम फन के लिए खेलते हैं, आपको परेशान करने के लिए नहीं। थोड़ी ही देर में बजाऊंगी कि वो गाना कौन सा है, लेकिन जिन्होंने सही जवाब दिया उनके नाम भी बताऊंगी, पर पहले सुनवाऊंगी आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का दूसरा गाना।
1: This is Ritu Sharma.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: जी हाँ बिल्कुल, ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना जिसे लिया था फिल्म नया दौर से। और अब बात करते हैं आज के थ्री वर्स गेम वाले गाने की। बहुत सारे साथियों ने कहा है कि मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। बिल्कुल, इसमें मोहब्बत भी है, सहारा भी है, लेकिन नज़ारा नहीं है। और इसके म्यूज़िक डायरेक्टर आई थिंक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं, और मैंने जो गाना बताया है उसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं नौशाद। तो गाना कौन सा है, चलिए सुनवाती हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिए। लेकिन जिन्होंने सही जवाब दिया है उनके नाम है उल्लास, महेंद्र बाजारिया जी, मितुल पटेल, दिव्या जी, आभा शर्मा, जय भट्ट, कुकी हाजरा, करसन पिंडोरिया, विजय गुडोरी जी, गीता एंड हर्ष जोशी जी, रजनीश, अयूब चौहान, तोची पनेसर, अर्जुन जी एंड गिरीश जी फ्रॉम इंडिया। आप सबने सही पहचाना है। और अब सुनवाती हूँ आपसे बस थोड़ी ही देर में आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का वो ना आज के थ्री वर्स गेम का वो गाना।
1: Holiday breaks are brought to you by South All Travel.
0: लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आप हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो साउथ हॉल ट्रैवल को कॉल कीजिए। दुबई के लिए बहुत अच्छी डील्स चल रही हैं, उन्हें फ़ोन कीजिए 0208-574-8410 पर। सब कुछ एट ऑल प्रोटेक्टेड भी है।
1: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: ये है Like a Gold TravelHubWorld.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट TravelHubWorld.com.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation.

0: Starfall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, auto protected.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
4: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा।
5: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Avaara Pan 2.
4: उसने मुझे छुआ, पर अपनाया नहीं।
6: तो फिर
5: releasing in cinemas on August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
7: Honslo, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास।
8: बीकानेर वाला परंपरा भी।
9: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो TW3 1QT। कॉल करे 07487-687-885।
10: क्योंकि आ गया है
11: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lioncroft.
12: Cutthroat Ke Khiladi.
13: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
14: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: बिल्कुल, ये गाना हमने मेरे महबूब फिल्म से लिया था जिसमें लता जी की आवाज़ थी और इस फिल्म में इस गीत को रफ़ी साहब ने भी गाया है। वत्सला जी कहती हैं कि ये गाना सुनाकर आपने तो मेरा दिन बना दिया। तो चलिए, जिनका भी फेवरेट गीत था ये गाना उन सभी के नाम पर जाता है और ये था हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
2: ये है Like a Gold.
3: Currency updates are sponsored by Lemfi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तान रुपए and 166 बांग्लादेशी टकास।
4: Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think Lemfi. Lemfi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download Lemfi now. T's and C's apply.
5: LIKA Gold.
3: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 103.57 pounds per gram.
3: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: जी, अब जाने की बेला आ गई है और जाते जाते गिरीश जी, अनिल सोनी जी, कीर्ति जी, जैस्मीन जी, जासू जी, वत्सला जी, कीर्ति जी, भारती जी और हमारे जितने भी साथी साथ दे रहे हैं जिन्होंने सुबह से लेकर अब तक मेरा साथ दिया है, सभी का थैंक यू। मेरे बाद इस शो में गनुराग आपका साथ देंगे लाइक रेडियो गोल्ड पर, लाइका गोल्ड पर, लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर होंगी आपके साथ फजीला और लाइका रेडियो मिलन्स पर आनंदी आपका साथ देंगी। लेकिन कल होगी हमारी आपकी फिर से मुलाकात। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मिलते हैं कल आपसे। बाय।
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
6: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय 108 बेस हॉस्पिटल उरी। स्टार्ट्स 15th ऑफ अगस्त एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7 PM ऑन कलर्स टीवी।
7: आई होप मेजर नैना हम लोग वक्त पर पहुंचे।
8: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
9: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
8: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
9: विजिट travelhubworld.com।
8: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
10: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll Protect.

0: फिर से बोलो बोलो ना।
1: मेरी जा मेरा सब तेरा, मेरी जा मेरा।
2: किशोर दा और आशा ताई की आवाज कानों में मिश्री की तरह घुलती हुई, घुंघरू की आवाज फिल्म का एक खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के संदेशों का और बहुत बहुत धन्यवाद रितु शर्मा जी का जो इससे पहले थी हॉट सीट पर। आप सुन रहे हैं वीकेंड वाली पाठशाला अनुराग के साथ। चलिए थोड़ा सा जिक्र करते हैं इस फिल्म का, घुंघरू की आवाज़। हालांकि ये फिल्म कमर्शियली हिट नहीं हुई थी, लेकिन आर डी बर्मन के खूबसूरत संगीत के चलते इस फिल्म के गाने आज भी उतने ही प्यारे हैं। रामसे ब्रदर्स के लिए जिन्होंने इस फिल्म का निर्देशन किया था, उनके लिए बड़ा मौका था, क्योंकि इससे पहले आमतौर पर रामसे ब्रदर्स बैनर को एक बी ग्रेड हॉरर फिल्में बनाने के लिए जाना जाता था। लेकिन पहली बार रामसे ब्रदर्स के लिए बड़ा मौका था जब उन्होंने रेखा जैसी और विजय आनंद जैसे ए लिस्टेड सितारों के साथ काम किया नवकेतन फिल्म के जरिए और एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बनाई। और कमाल के इस फिल्म के गाने, हालांकि फिल्म काफ़ी विवादों में रही क्योंकि रेखा जी उस समय एल स्टेट सितारों में शुमार हुआ करती थी, उनके पास डेट्स नहीं थी, इसलिए इस फिल्म को रिलीज़ होने में बनने में एक साल का अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा वर्क एक्स्ट्रा समय भी लेना पड़ा और इसके चलते काफ़ी विवाद भी रहा, ख़ासतौर पर फिल्म के डायरेक्टर को लेकर और साथ ही साथ रेखा जी के डेट्स को लेकर भी काफ़ी चीज़ें टाला मटोला होती रही, काफ़ी वक्त लग गया इस फिल्म को बनने में। और कहा यह भी जाता है कि फिल्म के कुछ सीन्स में रेखा जी इस कदर इस बैनर से नाराज़ हो गई थी कि उन्होंने अपनी डबिंग भी कंप्लीट नहीं की। और आर डी बर्मन साहब का जैसे कि मैंने बताया कि कमाल का संगीत था और विजय आनंद जी के साथ बर्मन साहब का ये आखिरी कोलाब्रेशन भी था। तो ये थी फिल्म से जुड़ी हुई कुछ खास अहम जानकारियाँ, जो अगर पता हो तो फिर फिल्म भले ही आपने आज से 20 साल पहले देखी हो, लेकिन एक रूपरेखा उसकी आपको समझ में आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, अगला गाना आशा ताई और रफ़ी साहब की आवाज़ में। फिल्म का नाम है 10 लाख, करोड़ों का गाना है, फिल्म का नाम भले ही हो 10 लाख। सुनते रहें वीकेंड वाली पाठशाला।
3: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
2: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 128 रुपीस। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
3: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: From the first time they lose a
5: baby tooth, look mom,
4: to the countless times they forget to mention their
6: ingredients for food tech tomorrow,
4: to the last time you hear that school was
7: yeah, all right.
4: Kids grow up fast. Luckily at Tesco we have back-to-school uniform that grows with them, including everything they need like trousers and skirts with adjustable hems and waists. So you can focus less on the cost and more on all this. Tesco, every little helps. Available in the majority of larger stores and online.
8: Ye hai Leica Gold.
9: Leica Gold.
10: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
11: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
10: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
12: Lester Miller is back.
13: Get ready for a weekend full of colour, culture, music, food, family fun and live performances.
12: Confirmed artists include Lember Hussein Puri, H. Dami, Roach Killer, Chirag Rao and Shin DCS.
13: Hosted by the team of Leica Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester. An event by 101 Circle in association with Leicester City Council and Arts Council England.
14: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
0: Kajal's Couture's biggest end of season sale begins Saturday the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture on 159 The Broadway Southall and 47 Green Lane Northwood. The biggest sale of the season starts this Saturday at Kajal's Couture. Don't miss it. From the 8th of August until stocks last. So act quick.
7: Location, location, location.
15: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
15: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
15: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
15: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
15: In Dubai.
16: Chawal ho best, sab kare test. Disha rice ka hai zamana.
17: Disha Basmati Rice. Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash & Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save, Kenton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
18: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
19: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
20: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
21: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
22: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
21: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
20: Sonatours.co.uk special offer Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of August and get up to 400 off. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
23: Carotino Better Ghee. The healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Carotino Better Ghee. Available in Tesco's, Asda, Morrison's, and local grocery stores. Carotino Better Ghee.
24: Like a Gold. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
25: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
26: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: आशा दाई और रफी साहब की आवाज में 10 लाख फिल्म का ये बड़ा ही नॉटी सा सॉन्ग, और रवि साहब ने क्या कमाल का इस फिल्म के लिए संगीत दिया। संजय खान और बबीता इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए थे। अगला गाना उनके लिए है जो लॉन्ग ड्राइव पर निकल चुके हैं, तो अपने अपने स्टेशन का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए भाई, क्योंकि ये गाना दिल से निकलने वाला है।
0: On Rock with Golden Rock.

0: दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, और जब ये रोग लग ही जाए तो फिर खुली आंखों से सपने देखना शुरू हो जाता है। और कुछ ऐसा ही जिक्र, ऐसा ही मिजाज लेकर अगला गाना प्यार के बाद सपनों की दुनिया में ले जाएगा।
1: Like a Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
2: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: लता जी और अमित कुमार साहब की आवाज में लव स्टोरी फिल्म का ये प्यारा सा नगमा, और इसमें कह रही हैं कि मैं आई आई आई, यही मैं कहूंगा मैं आया आया आया। थोड़े से अंतराल के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद अगला गाना किशोर दा की आवाज में। यकीन मानिए ये इंतजार वर्थ इट है।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: From the first time they lose a
3: baby tooth, look mom,
2: to the countless times they forget to mention their
4: ingredients for food tech tomorrow,
2: to the last time you hear that school was
5: alright,
2: kids grow up fast. Luckily at Tesco we have back to school uniform that grows with them, including everything they need like trousers and skirts with adjustable hems and waists, so you can focus less on the cost and more on all this. Tesco, every little helps. Available in the majority of larger stores and online.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, best service with unbeatable price.
6: At all protected.
7: Visit TravelHubWorld.com.
8: 0730099823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग, और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823।
9: Dad, Dad, Dad!
10: What's wrong, beta?
9: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
10: I will run down to the money exchange now.
9: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
10: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
9: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
11: Vasudhaiv Kutumbakam ki mahan soch ko saakar karte hue pehli baar England की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर। आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए। 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर।
12: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208426 0678।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: South Hall. Desi Swad ka asli adda aa gaya hai.
4: Bikaner wala. Parampara bhi.
1: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स. आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB. कॉल 07795181001.
5: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
6: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
5: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेस, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
6: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
5: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
6: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
7: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा.
8: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Awarapan 2.
7: उसने मुझे छुआ, पर अपनाया नहीं.
9: तो फिर
8: releasing in cinemas on August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
10: मीनार ज्वेलर्स. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 02087677627.
11: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. The sun is out. And so are the summer hits on Leica Gold.

0: ओ मेरे दिल के चैन, किशोरदा की आवाज में मेरे जीवन साथी फिल्म का ये खूबसूरत सा नगमा है। याद रखें, अगले गाने के बाद, अगले गीत के बाद हम आपको बताएंगे, आप बताएं और हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड। तो दिमाग की बत्ती जलाने के लिए हो जाइए तैयार।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128.57 पाकिस्तानी रुपीस, 374.77 श्रीलंकन रुपीस, 452.49 बांग्लादेशी टका, 166.88 अफगान अफगानी, 88.78 एंड 1 US डॉलर 1.34.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £103.57 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Like a Gold, London's number one Asian retro music station.

0: राज कपूर साहब नूतन जी की खूबसूरत जोड़ी, और कई बार तो ऐसा ही लगता था कि मुकेश साहब की आवाज़ जब पिक्चराइज की जाती थी राज कपूर साहब के ऊपर, तो ऐसा लगता था राज साहब खुद ही गा रहे हैं। एनीवेज, बत्ती जलाने का टाइम आ गया है, दिमाग की बत्ती जलाइए और अगले घंटे आप बताएं हम सुनाए वाली थीम के लिए। आज का गोल्डन वर्ड है तुझे। वो तुझे मुझे वाला तुझे होता है ना, याद रखिए, सिर्फ तुझे, नॉट मुझे, याद रखें। तुझे वाले गाने हम तक पहुंचाते रहें।
1: ये है लाइका गोल्ड। This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 p.m. on Colors TV.
2: I hope mission hai na hum log waqt par pahunche.

0: नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन। श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
4: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
5: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour Our line.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 8574 8410। साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected. Start.

0: रवि साहब और आशा दाई की आवाज में बगावत फिल्म का एक खूबसूरत गीत सुन रहे थे आप। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने इस फिल्म का दिया था संगीत और गाने के प्यारे से बोल लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। फिल्म में नजर आए थे हिंदी सिनेमा के ही मैन कहे जाने वाले धर्म बाजी और रील और रियल लाइफ जोड़ी यानी कि हेमा मालिनी जी, साथ में रीना रॉय जी का भी बड़ा ही अहम किरदार। और दिमागी बत्ती जल गई है और बहुत सारे गीत हम तक पहुंच भी गए हैं। पहला गाना फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये गीत हम तक पहुँचाए हंसा बोरा जी, उल्लास जी और अमित साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। हालांकि बगावत फिल्म का गाना मेरे महबूब तुझे सलाम, ये सलाम लाइका नेटवर्क की तरफ से आप सभी के लिए है। और ये गाना हालांकि किसी ने हम तक नहीं पहुँचाया, ये गोल्डन राग की तरफ से आपको सुनाया गया है। और अगला गीत आ रहा है रफी साहब की आवाज़ में, फिल्म का नाम रखेंगे सरप्राइज और थोड़ी देर में बताएंगे ये गीत हम तक किसने पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया, दिमाग की बत्ती चलाए रखिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिलने जा रहे हैं 128 रुपीस। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
0: और एक नाम हम लेना भूल गए थे जिनका नाम है मीना शाह जी। आपके हालांकि दो गीत हम तक पहुंचे हैं, दोनों ही बड़े कमाल के हैं। DDLJ वाला गीत मीना जी के नाम।
2: ये है
3: Like a Gold.
4: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: Mum, I'm outside.
8: Yes, literally just landed.
9: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
8: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
9: And you didn't pay those massive roaming charges?
8: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
10: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
11: Gargels Couture's biggest end-of-season sale begins Saturday, the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Gargels Couture on 159 The Broadway Southall and 47 Green Lane Northwood. The biggest sale of the season starts this Saturday at Gargels Couture. Don't miss it. From the 8th of August until stocks last. So act quick.
12: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।

0: the track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: लिखे जो खत तुझे, कन्यादान फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, 1968 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म के इस खूबसूरत से गाने को हम तक पहुंचाया है मीना शाह जी, स्वप्निल और काजल जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही, कमाल का ये गीत। और जिस तरह की आज हमने थीम रखी है तुझे, मुझे लगता है कि तुझे वाले गाने ज़्यादातर उस दौर में और ज़्यादातर आपकी पसंद के विटारे से रफ़ी साहब की आवाज़ में ही निकल रहे हैं। अगला गाना है एक बार फिर से रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में, किसने भेजा है जल्दी से बताते हैं।
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, फिल्म का नाम असली नकली, और ये गीत हम तक पहुंचाया है संतोष जी और जगदीश जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस गीत को हम तक पहुंचाने के लिए। आप सुन रहे हैं सुरों से सजी वीकेंड वाली पाठशाला अनुराग के साथ।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: तो भाई लाइका रेडियो नेटवर्क होस्ट करने जा रहा है लेस्टर मेला 15 एंड 16 अगस्त को, और इस मौके पर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। वेन्यू है एबे पार्क लेस्टर फ्रॉम 12 PM अंटिल 7 PM, और यहां पर आपको मुलाकात करने का मौका मिलेगा हमारे प्रेजेंटर्स राजबदन, काजल, अनिका, रेडियो वाली एंड विश भटनागर के साथ। तमाम और भी प्रेजेंटर्स वहाँ पर पहुँचेंगे। परफॉर्मेंसेज में आपको देखने को मिलेंगे लेम्बर हुसैन पुरी, रोज किला, सिन DCS एच धमी, रमीत, डॉन डी, समा, ब्लेक एंड अदर्स। गेट योर टिकट्स फ्रॉम lestermela.co.uk, £3 पर पर्सन।
3: ऑन रॉ बाय साउथ ऑल ट्रैवल।
1: South Hall Travel is pleased to announce that the FCDU has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call South Hall Travel, most competitive Dubai deals. Number is 0208-574-8410. At all protected.
3: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
4: ये है लाइका गोल्ड,
3: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
1: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का डेट आपके लिए पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 28, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टाइटल है इज एस्ट्रोलॉजी रियल और ए ट्रैप, क्या एस्ट्रोलॉजी सही है या फिर एक तरह का जाल है, ट्रैप है? ये सब इन सब सवालों से पर्दा उठेगा, क्योंकि होस्ट हैं खुश, और आपको ये पॉडकास्ट लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजॉन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी देखने को सुनने को मिलेगा। इसलिए इस मौके को मत गवाएं। ज़्यादातर लोग अपने भविष्य को लेकर होते हैं चिंतित, तो ये पॉडकास्ट आपकी काफ़ी हद तक करेगा मदद।
3: लाइका एक्स्ट्रा इज़ हियर। Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. This is Leica Gold.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
5: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।

0: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: ये बवाल बॉस के ऊपर जाएगा भाई.
3: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है.
4: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो.
5: भाई निकाल माइक.
6: भाई भाई के प्यार कितना सुंदर.
1: The brand new reality TV show Bhojpuri Bawal, Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV.
7: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
8: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games and a bit of Ye Ya Wo. Only Leica Gold.

0: कमाल है भाई, रफी साहब और सुमन कल्याणपुर जी की आवाजों में अप्रैल फूल फिल्म का ये गाना 1964 में ये फिल्म आई थी। और ये गीत हम तक पहुंचाया है अर्जन साहब, डोची बनेसर जी और रानी जी, आपका भी नाम इसलिए शामिल है क्योंकि आपने ये गाना लाइका परिवार को डेडिकेट किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो LemFi के जरिए इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 128.57 पाकिस्तानी रुपीस, 374.76 श्रीलंकन रुपीस, 452.48 बांग्लादेशी टका, 167 अफगान अफगानी, 88.77 एंड 1 US डॉलर 1.34.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, King's

उदित नारायण, सुनिधि चौहान जी की आवाज में जानवर फिल्म का ही गाना। अक्षय कुमार साहब के वैसे तो एक्शन हीरो के तौर पर 90s में जाने जाते थे, लेकिन इस फिल्म में उनके इमोशंस भी खूब

0: शिखर कर आए थे, एक पिता की भूमिका में कमाल का किरदार उन्होंने निभाया। ये गाना हम तक पहुंचाया है सुमित चौरसिया, पंकज जी और सुमन जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये। और अगला गीत बड़ा ही कमाल का है, रफ़ी साहब सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है छोटी सी मुलाकात और ये गीत हम तक पहुँचाया है दिव्या जी, फरीदा गुलाम अली जी, रंजना कुकाड़िया और कीर्ति जी ने। आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए, दिमाग की बत्ती के बाद अब दिल की बत्ती जलाने का है मौका। अगला घंटा गोल्डन रॉक के तीन ऑप्शंस के साथ।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
2: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय 108 बेस हॉस्पिटल उरी। स्टार्ट्स 15th of August एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7 PM ऑन कलर्स टीवी।
3: आई होप मेजर नैना हम लोग वक्त पर पहुंचे।
4: Dad,
5: what's wrong, beta?
4: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
5: I will run down to the money exchange now.
4: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
5: Oi, balle balle! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
4: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
6: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
7: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाऊ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
11: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
12: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
11: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
12: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
13: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स, परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में। इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर। आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए। 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे, बायरन हॉल, हैरो लेजर सेंटर।
14: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208-426-0678।
15: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
16: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
15: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
16: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
15: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
16: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
17: Ilford, ab asli Indian flavors ka maza lijiye.
18: Bikaner wala parampara bhi.
19: Famous chole bhature, raj kachori, mithai aur bahut kuch aapka intezar kar raha hai. Milte hain 513-519 Cranbrook Road, Gansill, Ilford, IG26HA. Call 07555-506015.
20: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
21: Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk. On Rug with Golden Rug.
22: तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या?

0: तो भाई अब इंतजार खत्म हो गया है तेजाब फिल्म का ये गाना सुनने के बाद, अब इंतजार हो गया है खत्म। जी हाँ, क्योंकि अब हमें आपको बताना है आज के गोल्डन राग के तीन प्यारे प्यारे ऑप्शन जिन्हें हमने बहुत दिल लगा कर चुना है आपके लिए। जल्दी से बताते हैं कायदे प्लस कानून, हम आपको तीन ऑप्शन देंगे ए बी सी जो कि गानों के ऑप्शन होंगे, जिनमें से अपने दिमाग की बत्ती को जलाकर, माफ कीजिएगा दिल की बत्ती को जलाकर, इनमें से एक ऑप्शन यानी कि एक गाने वाले ऑप्शन को आपको चुनना है और उसे वोट की तरह कास्ट करना है। और जिस ऑप्शन को लेकर सबसे ज्यादा वोट समय रिसीव होंगे वो गाना बनेगा भारी मतों के साथ आज का विजयी गोल्डन राग। तो पेश खिदमत है आपके लिए आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस। ऑप्शन ए है बड़ा ही प्यारा गाना रफी साहब की आवाज में, दिल का भंवर करे पुकार, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने। ऑप्शन बी है धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, फिल्म का नाम है गोरा और काला। ऑप्शन सी है कजरा लगा के गजरा सजा के, फिल्म का नाम है अपना देश। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस। ऑप्शन ए है दिल का भंवर करे पुकार फ्रॉम द फिल्म तेरे घर के सामने। ऑप्शन बी है धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, फिल्म का नाम है गोरा और काला। ऑप्शन सी है कजरा लगा के गजरा सजा के, फिल्म का नाम है अपना देश। वोटिंग लाइन्स हो चुकी हैं, आप सबके लिए ओपन, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें और सुनते रहें वीकेंड वाली ये पाठशाला, क्योंकि अगला गाना आने वाला है हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक, उस दौर के चॉकलेटी हीरो कहे जाने वाले विश्वजीत जी की फिल्म से जुड़ा हुआ। सुनते रहें गोल्डन राग।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: India में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले मिल रहे हैं आपको इंडियन करेंसी में 128 रुपीस। आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m. Kajal's Couture's biggest end-of-season sale begins Saturday, the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture on 159 The Broadway Southall and 47 Green Lane Northwood. The biggest sale of the season starts this Saturday at Kajal's Couture. Don't miss it. From the 8th of August until stocks last. So act quick.
4: Dreaming of paradise?
5: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
4: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
5: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
4: At all protected.
6: 073-00-99-8823. Note kiya? Kitty party? Business meeting? Corporate event? Family occasion? Bas! WhatsApp kare Godfather and Co. Bar and Kitchen Co. Service? Excellent. Food? Amazing. Aur experience aisa ke aap khud bhi aayenge aur dusro ko bhi recommend karenge. Vivek House, Watford. Book on WhatsApp. 073 00

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं। और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट Sunday the 6th of September at the Mesha Lohana Center, London. Apni seats abhi book kijiye. For more information, call Ashwin on 07956-278-228. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
4: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
3: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
5: बी पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग,
0: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS स्वामीनारायण मंदिर इन पेरिस, अ वंस इन अ लाइफ टाइम स्पिरिचुअल journey.
5: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
0: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
5: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
7: डेड्रे, लुक, इट्स द बॉटमलेस दिस टाइम, स्लाइडिंग अक्रॉस देयर कार बोनेट।
8: लीव एंड बी फिलिप, they just claim confident.
7: Claim confident?
8: Yes, by doing their own car finance compensation claim, using the FCA's free tools to help, they'll keep 100% of what they're owed. I've just done ours too. Come on!
7: Deirdre? Deirdre? Come back here.
9: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.
10: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
11: Four beers, please, garçon!
10: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
12: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे।
13: Artist of the week is brought to you by our new podcast Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: लता जी और रफी साहब की आवाज में बड़ा ही प्यारा गीत दो कलियां फिल्म का, और ये गीत हमने आपको इसलिए सुनाया है, हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं विश्वजीत साहब। और एक बार फिर से आप सबके लिए हम आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस रिपीट करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं वो ऑप्शंस क्या थे, क्योंकि दिल की बत्ती जलानी जो है, इसलिए रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर से। ऑप्शन ए है दिल का भंवर करे पुकार, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने। ऑप्शन बी है धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, फिल्म का नाम है गोरा और काला। ऑप्शन सी है गजरा लगा के गजरा सजा के, फिल्म का नाम है अपना देश। वोटिंग लाइन ओपन है, इसलिए अपने अपने वोट कास्ट करते रहें और अपने भारी मतों को देकर अपने गोल्डन राग को आज भी विजयी बनाएं। सुनते रहें वीकेंड वाली पाठशाला।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
0: लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन। डिटेल्स एट laikaradio.com।
2: लिसन व्हेरेवर यू आर बाय डाउनलोडिंग द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप नाउ। ऑन राग विद गोल्डन राग। फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लिए आज की वोटिंग लाइंस चुना जा चुका है आज का गोल्डन राग। देखते हैं क्या दिया है सरप्राइज आप दोनों ने भारी मतों के साथ।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिलने जा रहे हैं 128.57 पाकिस्तानी रुपीस, 374.76 श्रीलंकन रुपीस, 452.48 बांग्लादेशी टका, 167 अफगानी 88.76 एंड 1 US डॉलर 1.34.
1: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £103.57 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: लाइका गोल्ड आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।

0: ले
1: कब हवर करे पुकार। फिल्म का नाम तेरे घर के सामने। हसरत जयपुरी साहब ने गाने के बोल लिखे और फिल्म का संगीत था एसडी बर्मन साहब का। और बैक टू बैक एक और गाना आ गया देव साहब की फिल्म से जुड़ा हुआ। नूतन जी साथ में नजर आई थी। इस गाने को सबसे ज्यादा वोट देकर आपने बनाया है आज का गोल्डन आग। जल्दी से लेते हैं नाम, किसने दिया इस गीत को, इस गाने को वोट। अमिता जी, मिसेस इकबाल बेगम, सपना जी अक्सब्रिज से, अनामिक जी, उल्लास जी, अर्जुन साहब, रानी सुनाहे, शेखर साहब, गिरीश पंजवानी, हंसा बोरा जी, किरण जी, रेखा सुमारिया जी, अयूब चौहान भाई, बिपिन ज्योत्सना, साकू जोशी, भारती डीडी, सुमित चौरसिया, कंचन, सालिम अख्तर, अफरोज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहें, मस्त रहें और सुनते रहें लाइका नेटवर्क।
2: ये है लाइका गोल्ड। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय 108 बेस हॉस्पिटल उरी। स्टार्ट्स 15th ऑफ अगस्त एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7 PM ऑन कलर्स टीवी।
3: आई होप मेजर नैना हम लोग वक्त पर पहुंचे।
4: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
5: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
4: So where do we find something like that now?
5: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our elders used it.
2: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
7: लंदन जेस एंटरटेनमेंट presents Bollywood legend live in London. Bollywood actor Aftab Shivdasani. Playback singer Aman Trikha. Aur soulful singer Mayuri Patalia live Harrow mein. Saturday 3rd October 7 PM Harrow Arts Center. Tickets abhi book kijiye Harrow Arts Center box office se. More information ke liye call 0777-161-5800. Exclusive radio partner Laika Radio Network.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02 08574 8410, दैट्स 8574 8410।
4: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
5: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10 kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10 kg, only £7.99, exclusively at quality food stores.
6: Honslo, ab India ka favorite swad bilkul aapke paas.
7: Bikaner wala parampara bhi.
8: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट, हाउसलो, TW3 1QT। कॉल करें 07487-687-885।
9: कैरेटिनो बेटर घी, द हेल्थियर, लो प्राइस, कोलेस्ट्रॉल फ्री बटर घी ऑल्टरनेटिव। कैरेटिनो बेटर घी अवेलेबल इन टेस्कोस, एस्डा, मॉरिसन्स एंड लोकल ग्रोसरी स्टोर्स। कैरेटिनो बेटर घी।
4: Next, Sarita Sabharwal with Golden Memories. This is Like a Gold.
10: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Like a Gold. Make it a date.

0: मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत था फ्रॉम द फिल्म निगाहें नगीना था फिल्म का नाम। और इससे पहले आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैंने किया हेलो ब्रदर के एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, बाबुल सुप्रिया और जसविंदर नरूला की आवाज़ें, एंड दिस वन वॉज फ्रॉम निगाहें, नॉट नगीना। Anyway, so मुझे उम्मीद है दोनों के दोनों गीत आपने पसंद किए होंगे। मेरे साथ ही एकदम पहचान जाते हैं क्या होने वाला है प्रोग्राम में। वेल, बता दूंगी कुछ ही देर में, बता दूंगी कि क्या चल रहा है प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले ज़रा आपसे पूछ लूँ, कैसे मिजाज हैं आपके? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इन्जॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो चेयर अपना हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है ना? दुख कम तो नहीं हो जाएगा अगर हम रोते रहेंगे, और अगर मुस्कुरा देंगे और दुखों को भी झेल लेंगे तो आगे सुख है। तो इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ। मेरे वो साथी जो ऑलरेडी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अपने होने का एहसास दिला रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच। इसी तरह से अपने मैसेजेस मुझ तक पहुँचाते रहिएगा। प्रोग्राम के इस सावन में घर से तो यही सोचा था कि सावन क्यों ना, सावन पे सारे गाने, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। लेकिन आई वॉज जस्ट वेटिंग कि थोड़ी सी तो बारिश हो जाए, फिर सोचा कि ऐसे तो बारिश हो ही नहीं रही है, हो सकता है सावन के गीत लगाऊं तो बारिश हो जाए। लेकिन मिडलैंड्स में तो हो रही है, थंडरी शावर्स हैं, तो आपको तो सावन के गाने ज़रूर पसंद आएंगे। कहीं भी मिडलैंड्स में आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो ज़रा बता दीजिएगा कि ये दोनों गीत आपको कैसे लगे, और कोई गीत आपको सावन का याद आ रहा हो और चाहते हैं कि प्रोग्राम में शामिल हो जाए तो किसने मना किया है। व्हाट्सएप मैसेजेस आप भेज सकते हैं मुझे, और मेरी कोशिश रहेगी आप सब के मैसेजेस का मैं जवाब ज़रूर दूँ। थैंक यू कि आपने हमें नंबर वन बनाया है, आपने हमारे रेडियो को और भी आगे बढ़ाया है। आपकी लिसनरशिप से हम आगे बढ़ते हैं, आपके हौसले से, आपकी हौसला अफजाई से, आपकी सपोर्ट से हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने प्रोग्रामों को पसंद किया और हमें हौसला अफजाई दी। थैंक यू, इसी तरह से सुनते रहिएगा। चलिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर SBI UK के जरिए पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो your £1 in British sterling can get you up to 228 rupees. Depends कि कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करा रहे हैं। तो आप ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? यू कैन गो टू द ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए। TNC अप्लाइज।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
3: Chawal ho best, sab kare test, Disha rice ka hai zamana.
4: Disha Basmati Rice. Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kachha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
5: सप्टेम्बर મહિનામાં હાસ્યનો ડબલ ધમાકો ફરી આવી રહ્યો છે.
6: તમે બધા પુરુષો તો લગ્ને કુવારા હો છો.
7: એ તમે સ્ત્રીઓ અમને છે ને પુરુષો નામ ખોટા ઓગવવાનું બંધ કરો.
5: કોમેડી કિંગ નિમેશ શાહ અને ક્વીન ઓફ કોમેડી મલ્લિકા શાહ લઈને આવી રહ્યા છે સુપરહિટ ગુજરાતી નાટક હાલો પટેલ ભાઈની જાનમાં. હવે રાઇસલી, પોટર્સમાર, ઇલફર્ડ, સાઉથ લંડન અને લ્યુટનમાં. ટિકિટ્સ અને વધુ માહિતી માટે આજે જ કોલ કરો મંજુને ઓન 07931534270. નાટકનું નામ યાદ રાખજો.
8: Kajal's Couture's biggest end of season sale begins Saturday the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture on 159 The Broadway Southall and 47 Green Lane Northwood. The biggest sale of the season starts this Saturday at Kajal's Couture. Don't miss it. From the 8th of August until stocks last. So act quick.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: Dad.
11: What's wrong, beta?
10: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
11: I will run down to the money exchange now.
10: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
11: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
10: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
12: Kuch logon ki kahaniyan unki marzi se khatam nahi hoti.
13: A story of love, redemption and second chances returns to the big screen.
12: Dard se purana rishta hai mera.
13: Imran Hashmi is back in the much awaited sequel Awarapan 2.
12: Is baar ya to ye awarapan khatam hoga ya main.
13: Witness powerful emotions, breathtaking action and a soundtrack that stays with you long after the credits roll. Releasing in cinemas from August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Vikronia Media on Instagram.
14: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है
15: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी।
16: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे टेस्टी स्नैक्स मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB कॉल 0775181001
17: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com कॉल 0208767627
18: sonajewels.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027 book before the end of August and get 600 off or lose the discount call sonajewels now on 0208 951 0111
19: Lycagoon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and Lycagoon.com.
20: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
21: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: What a beautiful song from the film Jurmana 1979 mein aayi thi ye film. Lata ji ki awaaz mein gaaya hua ye geet. Mere bahut se saathiyon ne is geet ki farmaish ki hai. Thank you ever so much. Aap sabke naam main in the end koshish karungi sabke naam le sakun, lekin आपके मैसेजेस मुझे बराबर मिल रहे हैं और मैं उनका जवाब भी दे रही हूँ साथ ही साथ, तो इसी तरह से मेरा साथ देते रहिएगा। और अगला गीत भी बहुत खूबसूरत है एंड ये गीत भी आपको पसंद आएगा ऐसी मैं आशा रखती हूँ। इसकी भी फरमाइश मुझ तक पहुँच चुकी है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं और ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं कोका नूडल्स वाले।
0: This is like a gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: From the film Manzil 1979 की फिल्म थी, किशोरदा की आवाज, रिमझिम गिरे सावन। आपके वहां बारिश हो रही है? वेल, हमारे भारत में तो बहुत बारिश हो

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: अच्छा चलिए आप मुझे ये बताएं कि सावन के महीने में आप क्या किया करते थे। अपने मुल्क में तो बहुत कुछ होता है, सावन के झूले पड़ते हैं, सावन के मेले भी लगते हैं एंड सावन में बहुत से अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। आप स्पेशल सावन के महीने में इस कंट्री में बैठे, बाहर की कंट्री में बैठे क्या क्या करते हैं, अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और सावन के महीने में स्पेशली जब बादल छाए होते हैं एंड खूब तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही होती है, तो बहुत से पकवान बनते हैं, जैसे पकोड़े, पूड़े बनते हैं, मालपुए बनते हैं, रबड़ी बनती है। आप क्या बनाते हैं बताइए, जानना चाहेगी सरिता आप सभी से। तो चलिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ा दी।
2: Sarita Sabharwal with your weekend classics. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: The Mercedes-Benz Platinum Star event is now on. Whether you're considering electric or combustion, unlock exclusive in-store savings across the range. And that's on top of our existing offers, like the A200 AMG Line Executive Hatchback, now available from £299 a month. Book your appointment at your local showroom today. PTH offer ends 30th of September. Advance rental £7,411, 4-year lease, subject to status and availability. T's and C's apply. Mercedes-Benz Finance.
4: ये है लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट ट्रेवल हब world.com।

0: सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे की आवाज़ें आपने सुनी। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। सुरेश जी की आवाज़ बहुत मीठी है, बहुत मीठी आवाज़। एंड चांदनी फिल्म से चुना था मैंने इस गीत को, शिव हरी कथा संगीत। 1989 में आई थी ये फिल्म। और ये गीत हमने बड़े प्यार से मुन्नी जी के नाम किया, जो आज अपना ख़ास दिन मना रही हैं, यानी कि अपना बर्थडे मना रही हैं। मुन्नी जी को ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी मुबारक, बहुत बहुत बधाई। संध्या भावसर, हितेश जी और संध्या जी की सारी सहेलियों की तरफ से मुन्नी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: हेलो हेलो हेलो, वेक अप विद मी काजल ऑन द ब्रेकफास्ट शो, व्हेयर आई टेक यू डाउन मेमोरी लेन, गेट इंस्पायर्ड बाय मॉर्निंग मंत्रा, मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM, लाइक Gold and Leica Radio Midlands.
0: थोड़ी सी ये जिंगल्स में गलती हुई, पर कोई बात नहीं, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें करेंसी का रेट मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है। इंडियन रुपीस आपको एक पाउंड के बदले मिलेंगे 128.57, पाकिस्तानी रुपी 374.77, श्रीलंकन रुपी 452.52, बांग्लादेशी टका 167.12, अफगानिस 88.76 एंड US डॉलर 1.34।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Gold.
3: LIKA Gold.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold ka rate is for market mein 103.57 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: Like a gold.
2: L. Y. C. A. This is Leica.
0: बहुत से साथियों की फरमाइश पर
4: सावन का महीना पवन करे शोर

0: Book now, visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 4260678
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
5: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
5: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
7: T's and C's apply.
8: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और

0: के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
1: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
2: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena, Wembley in London.
1: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner Leica Radio Network.
3: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs अप्लाई।
5: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.

कल्याणी मित्रा और जसपाल सिंह की आवाज़ें आपने सुनी फ्रॉम द फिल्म सावन को आने दो, और ये भी फरमाइश थी किसी की, थैंक यू एवर सो मच फॉर टेकिंग पार्ट एंड सीरियसली प्रोग्राम सुनते हैं। दिस इज लाइका और ये गीत हमें न्यूज़ तक पहुंचा देगा। ये भी तो आप ही की पसंद है।

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और मैं आपका स्वागत करती हूँ प्रोग्राम के सेकंड आवर में. इट्स नियरली 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock. वेरी गुड इवनिंग टू यू. इफ़ यू जस्ट जॉइन मी, तो आपने पहले आवर में सावन वाले गाने मिस कर दिए, पर कोई बात नहीं, सावन का महीना है. इस महीने में शायद हो सकता है अगले हफ्ते भी एक आध गाना तो ज़रूर शामिल करने की कोशिश रहेगी. वैसे देशराज बसंत जी, आपने ही मुझे याद दिलाया था कि सरिता सावन का महीना है तो सावन के गीत हो जाए एक दिन. तो श्योर मैं वेट कर रही थी कि भी किस दिन बारिश हो तो उस दिन मैं सावन के गाने सुनाऊंगी. तो मैंने कहा ऐसे तो पूरा महीना ही निकल जाएगा, तो क्यों ना आज ही के प्रोग्राम में शामिल कर दें. तो और भी बहुत से गीत हैं, पर कुछ गीत ऐसे थे जो हमारे यहाँ से आपने एक दो दिन पहले ही सुने, इसलिए मैं नहीं सुनवा पाई. लाइक आई रियली लाइक दैट सॉन्ग पतझड़ सावन बसंत बहार वाला गीत, एंड वो गीत भी मुझे बहुत पसंद है. लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ऐसे और भी गाने थे जो नहीं मैं प्ले कर पाई. पर जितने भी गीत शामिल किए, आपकी वाहवाही तो मिली है मुझे. आपने हर गीत के बाद मुझे शाबाशी दी है और हमेशा सपोर्ट करते हैं. और सपोर्ट की बात करें तो आपने हमारी रेजर फिगर्स जान ली होंगी. हमारे यहाँ से हर रोज़ हर प्रेजेंटर आपको याद दिला रहे हैं कि आपका हम धन्यवाद करना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप बड़े प्यार से हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारा साथ देते हैं. और लाइका रेडियो नेटवर्क के सभी प्रोग्रामों को आपने बेहद दिल से पसंद किया है और हम सभी को बहुत बहुत अप्रिशिएट भी किया है. थैंक यू एवर सो मच. अगर आप ना होते तो हम भी नहीं होते. अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो लाइका रेडियो नेटवर्क और भी आगे बढ़ता रहेगा. इसी तरह से अपने मैसेजेस हमेशा भेजते रहा करें. अच्छा, बैक टू बैक दो गाने आपने सुने. पहला गीत मैंने फिल्म याराना से चुना था, जो कि 1995 में आई थी फिल्म. एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था डेविड धवन साहब ने, ऋषि कपूर, माधुरी दीक्षित और राज बब्बर ने इस फिल्म में काम किया था. नु मल्लिक जी का था संगीत. और दूसरा गीत सिलसिला सुपर डुपर हिट फिल्म थी, गाने बड़े हिट थे, शिव हरी जी का संगीत था इस फिल्म में. यश राज फिल्म्स की फिल्म थी, यश चोपड़ा जी ने इसे डायरेक्ट किया था. एंड शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, रेखा और संजीव कुमार ने इस फिल्म में काम किया था. और ये पर्टिकुलर सॉन्ग जो था वो, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, शशि कपूर एंड जया बच्चन पर पिक्चराइज हुआ था. क्यों, ठीक कहा सरिता ने, जल्दी से बता दीजिए.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: चलिए भाई, अगर इनके ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो आज आपको मिल सकते हैं 128 रुपीस. इट डिपेंड्स कि कितने पैसे आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं. और एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इतने पैसे मिलेंगे आपको, 128 रुपीस. एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए. TNC अप्लाइज.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ever get giddy renewing your car insurance? Fantasize about finance offers or paying your service bill? Probably not. After all, the best bit about driving a BMW is driving it. So leave the admin and skip to the best bit. Choose a new BMW 1 Series or 2 Series Grand Coupe by the 30th of September to enjoy a year's insurance, 3 years servicing, plus 2.9% APR representative. Search BMW, skip to the best bit. BMW UK Limited is a credit broker, not a lender. BMW Finance, T's and C's apply. Insurance age restrictions and exclusions apply. Whew, that's the admin over with.
1: Sarita Summerwall with your weekend classics. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: High Appreciation
5: in Dubai.
6: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
7: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
8: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
7: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
8: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
9: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02089223444।
10: सप्टेम्बर महीना मा हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे।
11: तमे बधा पुरुषो तो लग्ने कुवारा हो छो।
12: ए तमे स्त्रीओ अमने छे ने पुरुषो नाम खोटा ओगोवानु बंद करो।
10: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान मा। हवे राइसलीप, पोटर्स बार, इल्फर्ड, साउथ लंडन अने ल्यूटन मा। टिकिट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931534270। नाटक नु नाम याद राखजो
13: पटेल भाई जान मा।

0: रफी साहब ने गाया था इस गीत को, रजिंदर कृष्ण जी ने लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का था संगीत और फिल्म का नाम था प्यार किए जा। कौन थे इस फिल्म के हीरो हीरोइन याद है आपको? वेल, किशोर कुमार थे, शशि कपूर थे, महमूद थे इस फिल्म में, कल्पना, राजश्री, मुमताज एंड ओम प्रकाश। मल्टी स्टारर फिल्म थी और उम्मीद करती हूँ गीत आपने पसंद किया जो आप तक पहुँचाया।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Sarita Sabharwal, the biggest classics on Like a Gold.
0: आपको याद दिलाने जा रही हूँ कि उदित नारायण और आदित्य नारायण वाओ आ रहे हैं लंदन। 90s बॉलीवुड लेजेंड उदित नारायण परफॉर्म्स विद हिज सन आदित्य नारायण एट ओवो अरीना वेम्बले में ऑन संडे 20th December। टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट मास्टर एंड AXS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर कौन है? लाइका रेडियो नेटवर्क। और इसके साथ साथ एक और खुशखबरी, कविता कृष्णमूर्ति जी आ रही हैं लाइव। यस, कविता कृष्णमूर्ति, द लेजेंड कविता कृष्णमूर्ति परफॉर्म्स लाइव एट द रॉयल एल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1st November। ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एज ए दिवाली स्पेशल एंड टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू बॉक्स ऑफिस मिल सकती हैं आपको। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: Sarita Sabharwal, the biggest classics on Like a Gold.
0: एक और सुपर डुपर हिट गाना फ्रॉम द फिल्म जंजीर, 1973 की फिल्म थी प्राण जी पर ये गाना।

0: आजादी है।
1: मन्ना डे साहब की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत कितना मशहूर हुआ था ये आप सभी जानते हैं। प्राण जी पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था, फिल्म का नाम था जंजीर। राइट, आपको बता दें कि इस बारी के पॉडकास्ट का एपिसोड 28 आप तक पहुंच रहा है और उसका टॉपिक है इस एस्ट्रोलॉजी रियल और अ ट्रैप। क्या आप सोचते हैं, ये स्कैम होता है या कि रियल है? इफ़ हॉरोस्कोप मैचिंग इज एक्यूरेट, व्हाई डू कंपेटिबल मैरिजेस स्टिल एंड इन डिवोर्स। अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा, तो ज़रूर देखिएगा। और इसे होस्ट कर रही हैं खुश। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इट्स अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजोन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, तो ले लीजिएगा और देखिएगा।
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
3: इट्स ऑफिशियल, टेस्को पेट इंश्योरेंस इज द डॉग्स बिस्किट्स। At Tesco, we love pets, and we've been awarded a Which? Best Buy for all our lifetime dog and cat policies with over £5,000 cover. We offer a range of different policies and cover levels, so your cat gets the cream of pet insurance. To get a quote, search Tesco Pet Insurance. Cats and dogs aged 8 weeks or over. Monetary limits, excesses and exclusions apply. Provided by Pinnacle Insurance Limited.
4: लाइका गोल्ड
5: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: Visit travelhubworld.com.
9: Dad!
10: What's wrong, beta?
9: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
10: I will run down to the money exchange now.
9: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
10: Oi, bale bale. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
9: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
11: No need to fly back home this summer holiday. Come to Amba and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
12: London walo, dhyan se sun lo, ke furniture ki dhamake दार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।

शंकर जयकिशन जी का संगीत था, पर आई थिंक दिस सॉन्ग वॉज रिटन बाय हसरत जयपुरी. यस आई थिंक सो. ससुराल था फिल्म का नाम, जिसे टी प्रकाश राव जी ने बनाया था. उन्होंने डायरेक्ट की थी इस फिल्म

0: भैरव हंसा जी, विमल रायन जी, महेंद्र बरजारिया जी, भरत भारती जी जी, रानी जी इंसलाव, भारती जी दूसरी वाली भी, जैस्मिन जी, जयंत एंड मीना जी, फरीदा गुलाम अली, उल्लास फ्रॉम टोरंटो, वत्सला जी, अर्जुन जी, दिव्या हैरो से, नरेश जी, बिपिन ज्योत्सना जी, प्रतिभा जी, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। देखते हैं कि वक्त इजाजत देता है या नहीं। पहले जरा ये काम कर ले।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 128.55, Pakistani rupees 374.77, Sri Lankan rupee 452.48, Bangladeshi taka 167.8, Afghani 88.76, Kenyan shillings 174.53 and US dollars 1.34.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LAIKA Gold.
2: LAIKA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: गोल्ड का रेट इस वक्त मार्केट में 103 pounds and 57 pence का एक ग्राम सोना।
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: मैं हूं अश्विनी। हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइका गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी। फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए।
4: ये है लाइका गोल्ड।
5: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
6: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
7: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar sham ke liye, jahan ghazals milti hai Bollywood se.
8: Jaam chalne lage.
7: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Tickets starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners, Leica Radio Network.
9: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
10: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स Your travel mantra.
11: Kajal's Couture's biggest end-of-season sale begins Saturday, the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture on 159 The Broadway, Southall and 47 Green Lane, Northwood. The biggest sale of the season starts this Saturday at Kajal's Couture. Don't miss it. From the 8th of August until stocks last. So act quick.
12: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
13: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
12: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
13: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
12: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
13: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
12: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
13: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
14: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
15: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
16: 073-00-99-8823.
10: नोट किया?

0: कॉफी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
1: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
2: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
1: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
2: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
1: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
2: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10 kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10 kg is only £7.99, exclusively at quality food stores.

0: मरना भी मुश्किल। रफ़ी साहब की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत मैंने फिल्म प्रोफेसर से चुना था। और देखिए ना किस तरह से जल्दी जल्दी वक्त बीत जाता है। 5 मिनट रह गए 6 बजने में और फिर 1 घंटा और है हमारी और आपकी मुलाकात का। यस, आई विल बी विद यू टिल 7 o'clock। 7 बजे आएंगे हमारे विंटेज गोल्ड लेकर सैंडी शाह, उनका भी आप साथ देंगे। नेक्स्ट आवर में कुछ ऐसे गीत शामिल रहेंगे जो फिल्में आज ही के दिन रिलीज हुई, इसलिए सुनते रहिए, साथ देते रहिए।
1: This is Like a Gold. Reminisce those classics.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने. दिस सॉन्ग वॉज फ्रॉम द फिल्म चंबल की कसम, और ये फिल्म आज ही के दिन रिलीज हुई थी 1980. चंबल के कसम में काम किया था राजकुमार ने, शत्रुघ्न सिन्हा थे, मौसमी चैटर्जी थी. इस फिल्म का संगीत तैयार किया था खय्याम साहब ने, एंड रहा राम महेश्वरी जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. और बहुत सारे मेरे साथियों ने मैसेज भेजा है कि सरिता बहुत प्यारा गीत है, थैंक यू. एंड आज के प्रोग्राम के लास्ट आवर का पहला गाना मैंने चुना था फिल्म परदेश से. सुभाष घई साहब की फिल्म थी, उन्होंने इसे प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में थे शाहरुख खान, महिमा चौधरी, अपूर्व अग्निहोत्री, अमरीश पुरी, आलोक नाथ एंड हिमानी शिवपुरी. एंड इस फिल्म में महिमा चौधरी को लॉन्च सॉर्ट ऑफ किया गया था. एंड 8th अगस्त 1997 में ये फिल्म रिलीज हुई थी आज ही के दिन. एंड फिल्म का संगीत तैयार किया था नदीम श्रवण ने. उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपने पसंद किए.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, SBI UK वालों के जरिए अगर आप पैसे आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो 1 British sterling pound can get you today 128 rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNC applies.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और वे आज के प्रोग्राम में बिस्वजीत जी की फिल्म का एक बहुत प्यारा सा गीत मैंने चुना है. उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा. बहुत अच्छा गीत है फ्रॉम द फिल्म ये रात फिर ना आएगी. आप सोचते रहिए ना कौन सा गाना है, पहले जरा ये सुन लें.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: The Mercedes-Benz Platinum Star event is now on. Whether you're considering electric or combustion, unlock exclusive in-store savings across the range. And that's on top of our existing offers, like the A200 AMG Line Executive Hatchback, now available from £299 a month. Book your appointment at your local showroom today. PTH offer ends 30th of September. Advance rental £7,411, 4-year lease, subject to status and availability. T's and C's apply. Mercedes-Benz Finance.
1: Sarita Summerwall with your weekend classics. Like a
3: gold. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m. Kajal's Couture's biggest end-of-season sale begins Saturday, the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture on 159 The Broadway, Southall and 47 Green Lane, Northwood. The biggest sale of the season starts this Saturday at Kajal's Couture. Don't miss it. From the 8th of August until stocks last. So act quick.
5: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath. With over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu Ayurved that fits your life.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
2: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
3: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
5: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
6: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
7: What food make dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
8: To IA Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
7: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
8: Friends, family ya special night out, ise yaadgar banaiye. Visit Vivek House Watford. Call 01923227274. Book your table today.
9: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना।
10: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स।
9: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
11: sonatours.co.uk स्पेशल ऑफर 14 डेज टू जापान एंड साउथ कोरिया फॉर चेरी ब्लॉसम्स इन मार्च एंड अप्रैल 2027। बुक बिफोर द एंड ऑफ ऑगस्ट एंड गेट अप टू 400 ऑफ। Lose the discount after. Call Sonatours now on 0208-951-0111. From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 0208-767-2142.
12: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
13: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: इस हफ्ते के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक रहे बिस्वजीत जी, जिन्होंने बहुत सी शानदार फिल्मों में काम किया और उन्हीं में से मैंने इस फिल्म का गीत आप तक पहुंचाया, ये रात फिर ना आएगी, और महेंद्र कपूर साहब ने गाया था इस गीत को। आई होप यू एंजॉयड इट।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड, अ पार्ट ऑफ द नंबर वन एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क इन ग्रेटर लंदन, द लाइक अ ग्रुप, फील गुड ट्रैक। Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Another beautiful song. और इससे मैंने चुना था किस फिल्म से, आदमी और इंसान से। आज ही के दिन यानी 8th of August 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। धर्मेंद्र जी, सायरा बानू, फिरोज खान ने इस फिल्म में काम किया था। यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और रवि जी का था संगीत। साहिर लुधियानवी साहब ने लिखे थे इस फिल्म के सारे गीत। और उम्मीद करती हूँ मेरा चुना हुआ गीत आपने पसंद किया। वैसे इस फिल्म के बाकी के गाने भी ज़बरदस्त थे और मैंने इस गीत को कर दिया आप सभी के नाम जो बड़े प्यार से मेरा साथ दे रहे हैं और इसी तरह से चाहती हूँ साथ देते रहें टिल 7 o'clock।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: Are we there yet?
2: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
3: Relax, I've booked the Uber already.
2: But how? My roaming isn't even working yet.
3: I switched to Simsy before we left London.
2: Simsy? Since when are you the tech expert?
3: Since I decided I want a stress-free holiday.
4: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
5: T's and C's apply.
6: Dad!
7: What's wrong, beta?
6: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
7: I will run down to the money exchange now.
6: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
7: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
8: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
9: Chawal ho best, sab kare test. Disha Rice ka hai zamana. Disha Basmati Rice.
10: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
11: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर
12: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208-426-0678
13: Honslow, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास
14: बीकानेर वाला परंपरा भी
15: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे राज कचौरी मिठाई और बहुत कुछ आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हॉन्स्लो TW3 1QT कॉल करें 07487-687-885
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com T's and C's apply
17: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100 Atoll Protected.
18: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free, butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available. In Tesco's, Asda, Morrison's, and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
19: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
6: बजट टाइट पर ब्रांड का इंपैक्ट बड़ा चाहिए लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स

0: बट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत दिनों बाद सुना। फिल्म का नाम था कन्हैया और ये फिल्म 7 अगस्त 1959 में रिलीज हुई थी। नूतन और राज कपूर ने काम किया था और ओम प्रकाश ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एंड शंकर जयकिशन का था संगीत। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, 1 pound ke badle aaj aapko milenge Indian rupees 128.57, Pakistani rupees 374.77, Sri Lankan rupees 452.48, Bangladeshi taka 167.8, Afghani 88.76 and US dollars 1.34.

0: sweets and savouries, PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold ka rate is what market mein chal raha hai, £103.57 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 10 to 1 PM

0: ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ ये गीत भी आपने पसंद किया जिसे मैंने चुना था मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से चलो सजना जहाँ तक घटा चले। अब मेरे जाने का वक्त है और सैंडी के आने का वक्त है। सैंडी जी का आप इंतज़ार करेंगे, विंटेज गोल्ड के बाद आप हमारे नाइट सर्विस भी सुन पाएंगे। बहुत प्यारे प्यारे गीत होते हैं एंड उसके साथ साथ और भी बहुत से प्रोग्राम्स हैं। कल सुबह सुबह आ जाएंगे आपकी सेवा में दीप राजा अपना शो लेकर, फिर रितु शर्मा, फिर अनुराग और फिर सरिता की बारी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, बाय फॉर नाउ।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 p.m. on Colours TV.
2: I hope Major Nena, hum log waqt par pahunche.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन
7: 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823। हैव यू हैड अ बिरीवमेंट इन द फैमिली? इन टाइम्स ऑफ सैडनेस एंड ग्रीफ, ओम Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
8: One performer,
9: countless personalities,
8: a whole universe of entertainment.
9: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
8: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
9: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabi to brand new surprises.
8: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
9: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
8: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
10: कुछ लोगों की कहानियाँ उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती।
11: A story of love, redemption and second chances returns to the big screen.
10: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा।
11: इमरान हाशमी is back in the much awaited sequel Awarapan 2.
10: इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं।
11: Witness powerful emotions, breathtaking action, and a soundtrack that stays with you long after the credits roll. Releasing in cinemas from August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
12: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 0203773633। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।

0: So fast coming up to the end of the first hour. Time's absolutely flown on Vintage Gold, as it always does. Got a few messages and then a couple of tracks leading you up all the way to the news, and I'll join you on the other side of the news. This is Vintage Gold with Sandy Shah.
1: He had like our gold.
2: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
3: I hope Major Naina हम लोग वक्त पर पहुँचे.
4: September महीना में हसनो डबल धमाको फरी आवी रहे छे.
5: तमे बता पुरुष हो तो लगने लगने कुवारा हो छो.
6: ए तमे स्त्री हमने ऐसे कहे पुरुषों ने हम खोटा हो बोवानु बंद करो.
4: Comedy King निमेश शाह अने Queen of Comedy मल्लिका शाह लेने आवी रहे छे. Super hit गुजराती नाटक आलो पटेल भाई नी जान मा. हवे राइसली पॉटर्स बार ઇલફર્ડ સાઉથ લંડન અને લ્યુટન માં ટિકિટ્સ અને વધુ માહિતી માટે આજે જ કોલ કરો મંજુને ઓન 07931534270. નાટક નું નામ યાદ રાખજો
1: 07300998823. નોટ કિયા? કિટી પાર્ટી, બિઝનેસ મીટિંગ, કોર્પોરેટ ઇવેન્ટ, ફેમિલી ઓકેશન, બસ વોટ્સએપ કરે ગોડફાધર એન્ડ કો બાર એન્ડ કિચન કો. સર્વિસ એક્સેલન્ટ, ફૂડ અમેઝિંગ, ઓર એક્સપીરિયન્સ એસા કે આપ ખુદ ભી આયેંગે ઓર દૂસરો કો ભી રેકમેન્ડ કરેંગે. વિવેક હાઉસ વોટફર્ડ, બુક ઓન વોટ્સએપ 07300998823.
7: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934.
8: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना. दिशा बासमती राइस.
9: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड. अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस.
10: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
11: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
10: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
11: गारंटेड.
10: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
11: फोन 02085748410.
10: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
13: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा.
14: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Awarapan 2.
13: उसने मुझे छुआ पर अपनाया नहीं.
15: तो फिर.
14: Releasing in cinemas on August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.

0: on the Leica Radio Network.
1: ओ एवे दुनिया देवे दुहाई झूठा पौंदी शोर

0: झूठ बोलिया
1: कोई ना,
0: कि मैं कुफर तोलिया
1: कोई ना,
0: कि मैं जहर घोलिया
1: कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना।

0: इसके बाद हम सुनेंगे आवाज लता मंगेशकर की, अ वेरी रेयर सॉन्ग. फिल्म का नाम है नगीना 1951, विच एक्चुअली इंसिडेंटली स्टार दिलीप कुमार ब्रदर नासिर खान. मौसीकार थे शंकर जयकिशन और लता मंगेशकर की आवाज. इट ट्रूली इज अ वंडरफुल सॉन्ग. फिर उसके बाद हम सुनेंगे द बादशाह हिमसेल्फ के एल साइगल और फिल्म का नाम है पुजारन एंड वी आर गोइंग बैक टू 1936 और मौसीकार थे तिमिर बरन. Vintage Gold with Sandy Shah.
1: ये है Like a Gold, 10:35 AM.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays, हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
5: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203-773-633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स. परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर. आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए. 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर.
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208-426-0678.
8: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
9: Lights on, shutters up, staff ready.
8: But today's customers don't start on the high street.
9: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
8: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
9: They walk into your competitors.
8: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
9: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
12: Dard se purana rishta hai mera.
13: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Awarapan 2.
12: Usse mujhe chua, par apna aaya nahi.
14: To phir
13: releasing in cinemas on August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
15: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Making summer feel better on the Leica Radio Network.

0: Gold Nights. This is Like a Gold.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3444-24-hour line.
4: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027193 4.
5: Leicester Miller is back.
6: Get ready for a weekend full of colour, culture, music, food, family fun and live performances.
5: Confirmed artists include Lember Husseinpuri, H. Dami, Roach Killer, Chirag Rao and Shin DCS.
6: Hosted by the team of Laika Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester. An event by 101 Circle in association with Leicester City Council and Arts Council England.
7: Two businesses.
8: Same town.
7: Same service.
8: One appears on page one of Google.
7: The other doesn't.
8: Guess which one gets the customer?
7: The truth is brutal.
8: The first page of Google gets the business.
7: Everyone else gets what's left.
8: So here's the real question.
7: When your customers search for what you sell, do they find you?
8: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
7: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: Mega blockbuster Dhurandhar. Mega blockbuster Dhurandhar. 15th and 16th of August at 9 PM on Utsav Gold. Title sponsor Watchdog Security. Associate sponsor Lemfi.
12: Like a Radio Network. Proud hospitality partner. Ragasan.
13: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
14: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर.

0: Like a Goat.
1: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
5: सितंबर महीना में हास्यनो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे।
6: तमे बता पुरुषो तो लगने लगने कुवारा हो छो।
7: ए तमे स्त्रीओ अमने छे ने पुरुषो नाम खोटा ओबोवानो बंद करो।
5: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान मा। हवे राइसली, पॉटर्स बार, इलफर्ड, साउथ लंडन अने ल्यूटन मा। टिकट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजुने ऑन 07931534270। नाटक नु नाम याद राखजो,
8: हालो पटेल भाई नी जान मा।
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
10: You know how fans shout at football matches?
11: Oh, wake up!
10: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too, because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
12: Packed for the trip? Gifts? Passport?
13: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
14: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
13: Simzy?
14: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
15: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.

0: Gold Nights. Like a Gold on 10:35 AM.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
2: Dad,
3: what's wrong, beta?
2: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
3: I will run down to the money exchange now.
2: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
3: Oi, bale bale, I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
2: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
0: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the king of Sufi music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham. This October, for sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
4: अपने business को UK के largest Asian commercial radio network पर advertise करने के लिए call करें. Like our radio sales on 0207-132-1458 या email करें sales@laikamedia.co.uk.
5: रात भर न थमे, न रुके. क्लासिक नगमे आपके अपने लायका